0: बाय नेट को बाई वन गिफ्ट वन फ्री ऑफर में तीन महीना को 125 एमबीपीएस इंटरनेट और 2700 में खरीद गर्दा सुई इंटरनेट पैकेज नया जडान को लागि गिफ्ट करने मौका सफल रेफरल में आपको लागि एक महीना फ्री इंटरनेट बाय नेट अब सबै कनेक्टेड।
1: तपाई यति बेला सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम ट्रेसिङ टाइम। यदि तपाई पनि आफूलाई मन परेको गीत सुन्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 5584 94 डायल गरेर आफूलाई मन परेको गीत सुन्न सक्नुहुन्छ।

0: तीन महीना को 125 एमबीपीएस इंटरनेट जो 2700 में खरीद गर्दा सुई इंटरनेट पैकेज नया चरण को लागि गिफ्ट करने मौका सफल रेफरल मा आफ्नो लागि एक महीना फ्री इंटरनेट वायनेट अब सबै कनेक्टेड।
1: नमस्ते, म गायक जगदीश समाल, यहाँ सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो मध्यपश्चिम 91.3।

राम राम सन्जेक 5 बजे थारू भाषक मध्यपश्चिम खबर म शालिक राम चौधरी हार्दिक स्वागत बा। जिल्ला समन्वय समिति दाङको आयोजनामा संघ प्रदेश र स्थानीय तहको अनुभव आदान प्रदान ओ वार्षिक प्रगति समीक्षा कार्यक्रम कोराईमा शुरू रहल। आज दिनभर चल्ना कार्यक्रममा गत आर्थिक वर्ष 2082-83 संघ प्रदेश ओ स्थानीय तहमा हुल कार्य सम्पादन प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न कार्यक्रम रहल बा। जिल्ला समन्वय समिति दाङको प्रमुख नित्यानन्द शर्माको अध्यक्षता ओ लुम्बिनी प्रदेशको पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री एवं प्रदेश सभा सदस्य राजु खनालको बरपौनामा कार्यक्रम शुरू हुलक हो। कार्यक्रममा हुन छलफल से गत वर्षको समीक्षा ओ आगामी आर्थिक आगामी वर्षको योजना निर्माणमा सहयोग पुग्न अपेक्षा गरिगिल बा। कार्यक्रमको अवर पाउना राजु खनाल से यी खालको अनुभव आदान प्रदान कार्यक्रम से विकास निर्माण ओ योजना निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्न बटुवा राख्ल। जिल्ला समन्वय समिति दाङको उपाध्यक्ष चेतना चौधरीको स्वागत मन्तव्यसे शुरू हुलो कार्यक्रममा दाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी निश्चल राज पाण्डे पत्रकार महा दाङका अध्यक्ष सन्तोष सुवेदी लगायतले शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गरल रह। कार्यक्रममा अखिल जिल्लाका विभिन्न कार्यालयका प्रमुख हुकनक्सी आफ्ना आफ्नो कार्यालयको प्रगति विवरण प्रस्तुतिकरण गर्दै रहलबाट कार्यक्रममा विशिष्ट अतिथि लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य लोका विश्वकर्मा, गोराई उपमहानगरपालिकाका मेयर नरूलाल चौधरी, बंगलाचुडी गाउँपालिकाका अध्यक्ष तुलसीराम पुन, लमही नगरपालिकाका उपप्रमुख लक्ष्मी योगीको सहभागिता रहलबा। लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले भदौ 1 गते प्रदेश सभासे विश्वासको मत लिन तयारी गरिरहल। नेपाली कांग्रेसले साउन 12 गते प्रदेश सरकार हन दिलक समर्थन फिर्ता लिएपछि संवैधानिक व्यवस्था अनुसार मुख्यमन्त्री आचार्यले 30 दिनभित्र प्रदेश सभासे विश्वासको मत लिए पर्न प्रावधान अनुसार विश्वासको मत लिन शुरू गर्लख। मुख्यमन्त्री आचार्यले विश्वासको मत लिएपछि केल सरकार विस्तार ओ मन्त्रालय बाँडफाट टुंगिन तयारी गरिगिल बा। एमाले ओ नेकपा बीच हुलक सहमति अनुसार लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्व एमालेसले गर्न ओ आचार्य नजो मुख्यमन्त्रीमा निरन्तरता दिन निर्णय होस्याकल बा। लघु सत्ता समीकरण अनुसार नेकपा हन मन्त्रालय देना विषयमा अन्तिम सहमति जुट्न बाँकी बा। नेकपाको प्रदेश संसदीय दलको नेता इन्द्रजीत थारूसे मुख्यमन्त्रीसे विश्वासको मत लिएपा सकेल आफन दलसे मन्त्री पठिन तयारी रलग जानकारी दिइराख्ल। लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सहित 9 मन्त्रालयबाट हाल मन्त्री मुख्यमन्त्री सहित एमालेका 5 औ जनता समाजवादी पार्टी नेकपाको नेपालका 2 मन्त्री सरकारमाबाट 83 सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमत कलाका 42 सांसद आवश्यक पर्दा एमालेका 29 औ नेकपाका सभामुख सहित 13 सांसदबाट सभामुख से मतदान गर्नपैना हुलक हुन्छ सरकार हन बहुमत जुटाई थप दलको समर्थन आवश्यक पर्ना दिगिल्बा। गढ़वा गाउँपालिका वडा नम्बर 5 ककरहुवाका महिलाहरूको नक्से आप परम्परागत जस्तै भन आधुनिक प्रविधि से जोर्कन व्यावसायिक रूपमा दुना टपरी उत्पादन गर्न होरल। हातले जो दुना टपरी बनिती अहिलेका ककरहुवा महिला कृषक समूहका महिलाहन 3 आकारका डाई सहितका उच्च स्तरीय दुना टपरी बनिना मेसिन हस्तान्तरण गरिगिल बा। यूएन हेबिटेट ओ गुड नेटवर्स इन्टरनेशनल नेपालका आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा संचालित जलवायु मैत्री कृषि कार्यक्रम अन्तर्गत उक्त मेसिन उपलब्ध गराइलक हो। सामुदायिक आत्मनिर्भर सेवा केन्द्र सीएसआरसी का पहल तथा गढ़वा गाउँपालिका वडा नम्बर 5 का समन्वय ओ सहकार्यमा मेसिन हस्तान्तरण गरिगिल। जलवायु मैत्री कार्यक्रमकै संयोजक नीलम त्रिपाठी से जानकारी दिइराख्ले। कार्यक्रममा बोल्ती गढ़वा गाउँपालिका वडा नम्बर 5 का वडा अध्यक्ष लेख बहादुर थापासे दुना टपरी उत्पादनमा केवल सामग्री बनिना कामको रूपमा निहोकन महिलाका आर्थिक आत्मनिर्भरता ओ स्थानीय स्रोतका सदुपयोगसँग जोर्कन अगाडि बढ़ाई पर्न बटुवा राख्ले। दुना टपरी उत्पादनका आर्थिक गतिविधिसँग वातावरण संरक्षणमा समेत योगदान पुर्याउने विश्वास करगिलबा। प्लास्टिक प्लेट तथा अन्य कृत्रिम सामग्रीका विकल्पको रूपमा प्राकृतिक पट्टे मसे बनिलक दुना टपरी प्रयोग गरेर सेकजिना हुलको से भुआज धार्मिक तथा सामाजिक कार्यक्रम एकर बजार विस्तार कर सेकजिना समूहका काहीबाटिन। कार्यक्रम समूहकी अध्यक्ष शिवा डंगुलको अध्यक्षता तथा गढ़वा गाउँपालिकाको वडा नम्बर 5 को वडा अध्यक्ष लेख बहादुर थापाको बरपौनामा सम्पन्न हुल रह।
ओदांग गोराई रामपुर हाजीपुर सड़क खंड के स्तरोन्नति हुई फे खोलम पुल निर्माण हुई निशाकुवर बरसात का समय में स्थानीय वासियों को नक्शे शास्त्री बिहार परल रहल बाटिन। मार्ग अन्तर्गत पर्ना उक्त सड़क खण्डमा दैनिक तीन ठो बस सञ्चालन हुन कर्लसेफे वर्षातको कारण खुल्ला महिना पानी से सड़क बिग्रबेर यातायातका साधन सञ्चालनमा समस्या हुन करलबा। खास गरिकन घोराई उपमहानगरपालिका एक ओ बंगलाचुली गाउँपालिका चार जोर्ना सुका खुल्लामा पुल निर्माणको काम ढिलाइ हुइल घोर्से सवारी साधन सञ्चालनमा समस्या हुइलबा। सुका खुल्लामा पुल निर्माणको काम हुइति रहलसेफे निर्माण व्यवसायी से बजेट अभाव देखिती निर्माणमा ढिलाइ करलबा। सुका खोल्लामा पुल निर्माण कलाक 2081 साउन 1 गते सनलाइट जेडी स्मृति विशाल जेबीसे 4,05,08,782 रूपियाँमा ठेक्का सम्झौता हुइल रह। सम्झौता अनुसार 2082 पुष मसान्तसम्म पुल निर्माण सम्पन्न गर पर्ना हुइल सिप अखिसम्म करिब 50% खेल काम पूरा रहल। समय में जो पुल निर्माण हुई निशाको बंगलाचुली गाउँपालिका 7 ओ 8 संग वड़ा नंबर 3, 4, 5 ओ 6 अंतर्गत गहतेरा मूलाबारी स्वामीघाट हाँसीपुर कोईलाराले लगायत का बस्ती में स्थानीय कनकला घोराई आउजाउ करना समस्या हुई लग बंगलाचुली गांव पालिका वड़ा नंबर 7 का अध्यक्ष गिर बहादुर थापा बतवा रखल। वहां से झट्ट से पुल निर्माण कला स्थानीय सरकार कर पहल हुई तिरलक बतवा रखल। हुइठा ताजुक थारूभाषक मध्यपश्चिम खबर अत्रह कालसंजाफे थारूभाषक मध्यपश्चिम खबर सुन सेक्नीबाटी अखसक खबरमा से समाचार कक्ष कर्षकको संग्रहसँग मिसालिक राम चौधरी विदाई टू रिरी मध्यपश्चिम उनिटी रवि राम राम।

0: वाय नेट को बाय वन गिफ्ट वन फ्री अफर में तीन महीना को 125 एमबीपीएस इंटरनेट और 2700 में खरीद कर सोई इंटरनेट पैकेज नया जड़ान को लागि गिफ्ट करने मौका सफल रेफरल में आपको एक महीना फ्री इंटरनेट वाय नेट अब सब कनेक्टेड।
1: हाड जोड़नी कैंसर रोग विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारे सूचना।
2: हाड जोड़नी नसा तथा मेरुदण्ड रोग विशेषज्ञ तथा छाला मासु एवं हड्डी कैंसर सर्जन डाक्टर गोपाल पौडेल एमबीबीएस एनजीएमसी कोहलपुर एमएस बीएस एमएमयू ढाका
1: डाक्टर द्वारा दिइने सेवाहरू।
2: छाला तथा मांसपेशी सम्बन्धी क्यान्सर भएको,
3: हाड जोड्नी सम्बन्धी क्यान्सर भएको,
2: हात खुट्टा भाँचिएको प्लास्टर गर्नुपर्ने,
3: शरीर झमझमाउने, दुख्ने, सुन्निने, गाँठागुटी सिल्किने,
2: बाथ युरिक एसिड हड्डी खिएको,
3: ढाड कम्मर घुँडा तथा जोड्नी दुख्ने,
2: खेलाडीहरूको चोट तथा जोड्नी सम्बन्धी समस्या।
3: नोट, फोनबाट पनि नाम दर्ता गराउन सकिनेछ।
4: सम्पर्क दिव्य फार्मेसी घोराई 15 सडक विभाग रोड दाङ। फोन नम्बर 082-5410, मोबाइल नम्बर 98478-28913 र 98095-12871।

0: प्रोडक्टहरु कोकोनट चोकोनट भिटा मिल्क बटर पैक क्रीम मिल्की बटर तथा डाइजेस्टिव होल व्हीट बिस्किट
1: हेरा हेरा हेरा यो हो हाम्रो चोइस कोदोको डाइजेस्टिव र कुकी छ है नाइस
0: अडगुरी।

0: मध्य पश्चिम जाइन जैक यति बेला बेलुकीको 7 बजेको छ।
1: ओखती साबुन को अर्को प्रस्तुति बहुगुणी ओखती आयुर्वेदिक तेल लामो अनुसंधान पछि आविष्कार भएको रुगा खोकी नाकबन्द जिउ दुखेको आदि सबैका लागि एकमात्र अचूक तेल जडीबुटीको शक्ति ओखती आयुर्वेदिक ते मात्र रु 50 मा।
2: गुराहीको लागि आधिकारिक विक्रेता भुसाल स्टोर हस्पिटल रोड गुराहीदाङ फोन नम्बर 082-5161-210। थप सम्पर्कका लागि हिमालय स्टोर बाल मन्दिर अगाडि निरज स्टोर सब्जी मण्डी नजिक र प्रवेश श्रृंगार दूरसञ्चारदेखि पश्चिम तर्फ।
3: सम्पूर्ण विशेषज्ञ सेवाहरू अब एउटै छाना मुनि।
4: वरिष्ठ हाट जोर्नी तथा नशा रोग विशेषज्ञ डाक्टर अनिल यादव बुद्ध इन्टरनेशनल हस्पिटल प्राली घोराहीमा।
5: डाक्टर अनिल यादवद्वारा दिइने सेवाहरू:
4: हात खुट्टा भाँचिएको, हात खुट्टा झमझमाउने, ढाड कम्मर दुख्ने, हाट जोर्नी सम्बन्धी अपरेशन सेवा।
6: अन्य विशेषज्ञ सेवाहरू: वरिष्ठ फिजिसियन डाक्टर अभ्यास पोखेलद्वारा बिरामी चेक जाँच सेवा,
7: वरिष्ठ सर्जन डाक्टर रमेश बस्नेतद्वारा बिरामी चेक जाँच तथा अपरेशन सेवा,
8: नशा तथा मानसिक रोग विशेषज्ञ डाक्टर सुबोध कुमार शर्मा द्वारा बिरामी चेक जाँच तथा उपचार सेवा,
9: वरिष्ठ स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डाक्टर विमला तिवारी द्वारा चेक जाँच तथा अपरेशन सेवा,
10: वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डाक्टर विज्ञान केसी द्वारा बिरामीको चेक जाँच तथा उपचार सेवा,
11: वरिष्ठ रेडियोलोजिस्ट डाक्टर अनिश आचार्य द्वारा भिडियो एक्सरे सेवा,
12: साथै इन्डोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, सिस्टोस्कोपी, इको, कल्पोस्कोपी, सिटीजी लगायतका अत्याधुनिक प्रविधिका सेवाहरू।
3: सम्पर्क बुद्ध इन्टरनेशनल हस्पिटल प्राली, सडक विभाग ओह्रालो, घोराई जाँच, फोन नम्बर 082-5363-218।

0: मध्ये पस्नु
1: सूचना न्यू मनकामना डेन्टल क्लिनिक सरेर सड़क विभाग ओरालोमा मेन रोड स्थित बुद्ध हस्पिटल नेर नयाँ व्यवस्थापन र निशुल्क दन्त परीक्षा